0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी शर्तनि ते आबन हरमुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहे, आबन हरमुज़ मां कंहिं ॿिए रस्ते जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ईरान जी वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि, कुझु जहाज़नि खे धिके रहियो आहे, उहे बि नुक़सान खां खाई वापसि मोटी खाई रहिया आहिनि। यूक्रेन खां पलांद लाइ टिनि हंधनि जी निशानदेही करे छॾी हुई, पर यूक्रेनी इख़्तियारनि फोन تسلیم کئی آئندہ بیہر اڑی غلطی نہ کرن جی پک ڈیڑ سبب حملے جے ارادے کے ملتوی کرے چھڈیو।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारीअ जा आज़ाद कश्मीर जे चूंडनि में नवाज़ लीग ते धांधलियुनि जा इल्ज़ाम। मुलगीर तहरीक हलाइण जो ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी पंहिंजे बयान में चयो आहे त नवाज़ लीग हुकूमत जा ॾींहं गणजी चुका आहिनि। आज़ाद कश्मीर में पीपी कारकुननि नवाज़ लीग जी ॾाढ जो मुक़ाबिलो कयो ऐं शहादत माणी। ही शफ़ाफ़ चूंड न पर कातिल इलेक्शन हुई। मीरपुर ऐं मुज़फ़राबाद में चोरी कयल सीटूं हुननि खां वापसि वठंदसि। नवाज़ लीग गौर सां ॿुधे संदन ॾींहुं गणजी चुका आहिनि।

ज़लीक जे आज़ाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करण जी दावा पीपल्स पार्टी पाबंदी मड़ियल तंजीम सां गॾु हंगामा करण जो इल्ज़ाम वफ़ाकी वज़ीर अमीर मक़ाम सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो त आज़ाद कश्मीर में चूंडू शफ़ाफ़ माहौल में थियूं आहिनि।

आज़ाद कश्मीर जे 45 सीटनि मां 23 नवाज़ ली कामयाबी माणी आहे। महाजरनि जे 12 सीटनि मां बि 10 सीटूं नवाज़ ली खटियूं आहिनि। धांधली कंदड़ 7 सीटनि मां रुगो 3 सीटूं खटे सघिया आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अतातारण चयो आहे त नवाज़ लीग जी कामयाबी मुख़ालिफ़नि खां हज़म न थी रही आहे। आज़ाद कश्मीर में नवाज़ लीग सादी अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे। शर्जील इनाम मेमण जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। अवाम तरक़ीअ खे वोट ॾिनो।

सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेंबर नून लीग के पंजाब ए वफाकी हुकूमत के फारम 47 तहत मिलियल हैराती हुकूमत करार दई छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील इनाम मेंबर चयो त पंजाब ए वफाक में नवाज लीग हैराती मैंडेट जरिए इक़्तदार माणियो आहे, अञा भी नवाज लीग माज़ीअ मां सिखण लाइ तयार नाहे। नवाज लीग आज़ाद कश्मीर में धांधली कई, कश्मीरियुनि जे वोट ते धाड़ो हयो। आज़ाद कश्मीर जे चूंडनि में 2024 वारी रिवायत खे वरजायो वियो। वफाकी वज़ीरनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बे तकबर ते ॿधल हुई। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि सीड़पकारीअ खे हथी ॾियण बाबति इजलास। शहबाज़ शरीफ पारां कारोबार खे हथी ॾियण लाइ प्राइवेट इक्विटी फंड जे क़याम बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। वज़ीर आज़म चयो त मुल्की मुआशी तरक़ीअ लाइ निजी सीड़पकारी अंतर आहे, सीड़पकारीअ लाइ मुतबादल ज़रियनि खे बि हथी ॾियणी पवंदी।

हुकूमत पारां पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमत में मामूली लाथ। पेट्रोल 4.08 रुपया ऐं डीज़ल 2.45 रुपया फ़ी लीटर सस्तो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 331.95 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 399.93 रुपया फ़ी लीटर मुक़ररु। पेट्रोलियम डीज़लनि पारां नयूं क़ीमतूं 4 अगस्त लाइ लागू कयूं वयूं। नोटिफिकेशन जारी।

वडे वजीर सैद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बलोर मऊंगा बाजार की मुलाकात बार वाद वेज में रुकावट के खात्मे लिए सिंध हुकूमत ए वर्ल्ड बैंक जो गडियल हिकमत अमली से इतफाक गिजायत साफ पानी समाजी तहफुज ए जरायत के गडियल फ्रेमवर्क हेठ आने जो फैसलो वडे वजीर बार में गिजाई खोट इंसानी तरक्की आदो वन चैलेंजेस में एक है बार की गिजायत बेहतर बनाने लाय गडियल हदफ ए मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर वो।

0: यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: के भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तुम खो चुके, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी FM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जा आजाद कश्मीर के चूंडन में नवाज लीग ते धांधलिन जा इल्ज़ाम मुलगीर तहरीक हलान जो ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी पेंजे बयान में चयो आहे त नवाज लीग हुकूमत जा डी गणजी चुका आहिन। आजाद कश्मीर में पीपी कारकुनन नवाज लीग जी डाट जो मुकाबलो कयो ऐं शहादत माणी। ही शफाफ चूंड न पर कातिल इलेक्शन हुई। मीरपुर ऐं मुज़फ़राबाद में चोरी कयल सीटूं हुननि खां वापसि वठंदसि। नवाज लीग गौर सां ॿुधे संदन ॾींहुं गणजी चुका आहिनि।

कराची पुलिस जा अहलकार पुलिस मोबाइल में स्मगलिंग कंदे बलूचिस्तान में गिरफ्तार आई जी सिंध की मुदाखलत बाद सिंध पुलिस हवाले केस दाखिल करण बाद गिरफ्तारी भी जाहिर स्मगलिंग में मुलविस अहलकार की सरपरस्ती कंदड़ SSP जावेद जमीरुद्दीन फारूकी मुअत्तल गिरफ्तार थियल अहलकार पुलिस मोबाइल में नशे वारियूं सोपारियूं सिगरेट ए बो सामान मौजूद हो कराची क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन में मुकर्र SSP जावेद जमीरुद्दीन फारूकी अहलकारन के छॾण लाइ भी पहुतो हो अहलकारन खिलाफ़ दाखिल कयल FIR में SSP ऐं पुलिस मोबाइल जो ज़िक्र नाहे कयो वियो IG सिंध पारां बि सख़्त कार्रवाई जी हिदायत

0: ऐं कराची में सुपर हाईवे ते जमाली पुल वेझो हथियारबंदनि जी फायरिंग में पुलिस अहलकार शहीद। पुलिस अहलकार ड्यूटी ते वञी रहियो हो त ॿिनि मोटरसाइकिलनि ते चार हथियारबंदनि खे निशानो बणायो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं घरू वज़ीर पारां वाक़े जो नोटिस। वॾे वज़ीर आई जी सिंध एडिशनल आई जी खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। कातिलनि खे गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आणण जो हुकुम।
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: समेत समूरे मुल्क में चालीह जा मातमी जुलूस सिंध में चालीह जुलूसन लाइ सिक्योरिटी इंतहाई सख़्त कई वई आहे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणी डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां निकतल जुलूस मंज़िल तरफ़ रवा दवा। कराची में मरकज़ी मातमी जुलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़ररु।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझी जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
2: त पोइ छा अञा ताईं फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
1: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
2: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर हंधि ते जल्दी जज़्ब थी। सूर, सोडिय, जिस्म जी नसुन जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
1: इस्तेमाल किए कजे।
2: रुगो मुतासिर हंध ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वठ। ऐं बुध, जेकॾहिं उमरे या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सां गॾु खणी वञा।
1: वाह, पोए अॼु ई वठींदसि।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: तालीम खाते बाबत अहम इजलास तालीम वारे वजीर सैद सरदार शाह इजलास के ब्रीफिंग दींदे बुधायो तो चारि जिलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि जिलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआति थी वेंदी। फ्रेम्स सां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत एहतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी।

केपीजे इलाके लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन केतराई खारजी जहनम भेड़ा सिक्योरिटी जरिए मौजूद फोर्सेज गुजी इतलाते लकी मरवत में ऑपरेशन किया वो जै दौरान दहशतगर्दन के थाकन के निशानो बनाया वो ऑपरेशन दौरान केतराई खारजी दहशतगर्द मार वाया संदन थाक तबाह किया वह सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस के शहीदन जो ॾियारो अज मल्हायो पियो वञे सिंध के मुख्तलिफ़ शहरन में पुलिस ऑफिसरन ऐं जवानन के शहीदन की मज़ार ते हाज़िरियूं गुलन जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं वयूं सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ घरू वज़ीर मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदन खे भेटा पेश सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं सारा जोगियूं आहिनि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख़्रु आहिनि घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं विसारण जोगियूं न आहिनि बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी वेड़ में पुलिस पहिरीं सफ़ में रही आहे।

सिंध समेत समूरे मुल्क में चालीह जा मातमी जलूस, सिंध में चालीह जलूसन लाइ सिक्योरिटी इंतिहाई सख़्त कई वई आहे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां निकितल जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराचीअ में मर्कज़ी मातमी जलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़ररु।

0: ककड़ वेझो थरड़ी जादू शहीद पुलिस में बैनातो 300 रुपया रिश्वत न डेण ते गुल बबर वासी पीरसन पोरेत कंडो बबर के गडह गाडे सा बधी छो पुलिस पोरेत कंडो बबर के काठ सा भरियल गडह गाडे सा हथ पैर बधी थाने अंदर विहारे छो पोरेत जे गडह गाडे सा बदल होण वारो वीडियो वायरल थी वयो पोरेत कंडो बबर चयो आहे त मिस्कीन आहियां काठियूं करे घर जो गुज़र सफ़र कंदो आहियां थरड़ी जादू शहीद पुलिस जे वॾे मुंशी सरवर कंबराणी ऐं आशिक बबर रिश्वत न ॾियण ते तशदुद करे गाॾे सां ॿधो हो। बाडरे पुलिस वॾे भाउ खे क़तल कंदड़ नंढे भाउ खे गिरफ़्तार करे वरितो। जवाबदार राबेल जुड़े जो वॾे भाउ आसिफ़ जुड़े जो खे खंजरनि जा वार करे क़तल कयो हो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में टे जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर
2: जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कयल।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
5: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
4: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
5: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
4: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
5: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
4: इस्तेमाल कीअं कजे?
5: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: मीसा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूरखा आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर था नालो वजी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: सुनी

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointments.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil-e-aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: हरमुज न खुलंदो ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहे अमरीकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमरीकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो नाकाबंदीअ ते अमरीकी बहरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा तेहरान आबराए हरमुज मां कंहिं बि मुतबादल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो ऐं न ई क़बूल कंदो आबराए ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी नवा सूबा एजेंडा ते ना ही आइन में का खोट आहे खोट निज़ाम में न पर असां में आहे असां आइन ते अमल नाहे कयो आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त असां आइन जी भंजकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कमु कीअं कंदो ही सिस्टम अध सदी कामयाबु रहियो आहे अॻिते बि कामयाबु रहंदो आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी वरे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास तालीम वारे वज़ीर सैद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त छहनि ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआति थी वेंदी फ्रेम्स सां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत एहतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी पाकिस्तान खे बिजलीअ जी पैदावार न पर इस्तेमाल ऐं ज़खीरो करण जो चैलेंज आहे मुल्क अंदरि कुदरती वसीलनि मां बिजलीअ जी पैदावारी सलाहियत बि 55% थी वई आहे इस्लामाबाद में सोलर बाबति कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे तवानाई वारे वज़ीर अवेस लगारी चयो आहे त पाकिस्तान तवानाई जे शोबे में तालीम में तब्दीलीअ मां गुज़री रहियो आहे हिन वक़्तु मुल्क में सोलर ज़रिए 38,000 मेगावाट बिजली पैदा थी रही आहे ॾींहं जो वाधू बिजली हूंदी आहे ऐं राति जो तलब वधी वेंदी आहे बिजलीअ जो ज़खीरो ऐं इस्तेमालु मसइलो बणियल आहे केपी जे इलाइक़े लखी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन केतिरा ई ख़ारजी जनम भेड़ा सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूद फोर्सिस गुझी इतला ते लखी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे ताक़नि खे निशानो बणायो वियो ऑपरेशन दौरान केतिरा ई ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं संदन थाक तबाह थी विया सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾियारो अॼु मल्हायो पियो वञे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस आफ़िसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं वयूं सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ घरू वज़ीर मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं सारा जोॻियूं आहिनि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं विसारणु जोॻियूं न आहिनि बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेड़ में पुलिस पहिरीं सिफ में रही आहे सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी जारी हज़रत इमाम हुसैन ऐं संदसि जान निसारनि जी यादि में निकितल 40 जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां कराची हैदराबाद मीरपुर ख़ास शहीद बेनज़ीराबाद सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकितल जलूसनि जो सफ़र जारी आहे कराची में मर्कज़ी मातमी जलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़ररु सूबे जे ॿियनि शहर में सिक्योरिटीअ जा सख़्तु इंतज़ाम थियल आहिनि टंडो मोहम्मद खान जे इलाइक़े बुलड़ी शाह करीम भरिसां ज़रई ज़मीन मां हिकु शख़्स जो तशद थियल लाश हथायो आहे मक़तूल जी सुञाणप जनसाण सूमरो वासी नूर मोहम्मद उर्फ़ मामा नूरो सूमरे जे नाले सां कई वई आहे लाश इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच करे रहिया आहियूं بہڑ میں چار ڈی اگ اسکول ویندے مبینہ طور اغوا تھل ٹن شاگردیاں کے عدالت میں پیش کیا ویو شاگردیانی روشنی فاطمہ تنزیلا پاور کے پولیس عدالت میں پیش کیا پولیس پاراں گرفتار مکھ جوابدار زین مہر کے بھی عدالت میں پیش کیا ویو شاگردیانی عدالت میں بیان ڈیندے چیو تے کہیں بھی اغوا نہ کیا مرضی اسا حیدرآباد ویوں ہوئیں سی حیدرآباد میں اسا میرپور خاص ویوں سی جتاں پولیس ہتھ کیا کہیں بھی اغوا نہ کیا ککڑ ویجو تھرڑی جادو شہید پولیس مبینہ طور 300 روپیہ رشوت نہ ڈیئن تے گل ببر واسی پیرسن پوریت کنڈو ببر کے گڈا گاڑے سے بدھی چڈی پولیس پوریت کنڈو ببر کے کاٹ سا بھریل گڈا ڈے سا ہتھ بدھی تھانے اندر ویارے چڈی پوریت جے گاڑے سے بدھل ہون والی ویڈیو وائرل تھی وئی پوریت کنڈو ببر چیو ہے تے مسکین آیا کاٹھوں کمبر میں خان وا بھرسا زرعی زمین جی مالکیت مغیری برادری کے بن دھرین میں جھیڑو گولیوں لگن سبب پولیس اہلکار علاور آیا مغیری زخمی لاڑکانوں منتقل

जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोतिए जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़, अञा साबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तव्हां सूबाई एजेंडा ते नाहिन न ही आइन में का खोट आहे, खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो, आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त असां आइन जी भञकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त हीउ कमु कीअं कंदो। ही सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे, चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वरी वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त छहनि ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ाइदा शुरूआति थी वेंदी। फ्रेम्स मां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत, एतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। पाकिस्तान खे बिजलीअ जी पैदावार न पर इस्तेमाल ऐं ज़खीरो करण जो चैलेंज आहे। मुल्क अंदरि कुदरती वसीलनि मां बिजलीअ जी पैदावारी सलाहियत बि 50% थी वई आहे। इस्लामाबाद में सोलर बाबति कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे तवानाई वारे वज़ीर अवेस लगारी चयो आहे त पाकिस्तान तवानाई जे शोबे में तब्दीलीअ मां गुज़री रहियो आहे। हिन वक़्तु मुल्क में सोलर ज़रिए 38,000 मेगावाट बिजली पैदा थी रही आहे। ॾींहं जो वाधू बिजली हूंदी आहे ऐं राति जो तलब वधी वेंदी आहे। बिजलीअ जो ज़खीरो ऐं इस्तेमाल मसलो बणियल आहे। केपी जे इलाइक़े लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, केतिरा ई ख़ारजी जहनुम भेड़ा। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि फोर्सिस गुझी इतलाह ते लकी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं संदन थाक तबाह कया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾियारो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस आफ़िसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं, गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं वयूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं ॿियनि 12 पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं सारा जोगियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं विसारण जोगियूं न आहिनि। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वेड़ में पुलिस पहिरें ई सिफ़ में रही आहे। सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी जारी। हज़रत इमाम हुसैन ऐं संदसि जान निसारनि जी यादि में निकितल 40 जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणी डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकितल जलूसनि जो सफ़र जारी। कराची में मरकज़ी मातमी जलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहरनि में बि सिक्योरिटीअ जा सख़्तु इंतज़ाम थियल आहिनि। टंडो मोहम्मद ख़ान जे इलाइक़े बुल्ली शाह करीम भरिसां ज़रई ज़मीन मां हिकु शख़्स जो तशद थियल लाश हथायो आहे। मक़तूल जी सुञाणप जनसाण सूमरो वासी नूर मोहम्मद उर्फ़ मामा नूरो सूमरो जे नाले सां कई वई। लाश इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। पुलिस चयो आहे त मामले जी जाच करे रहिया आहियूं। मेहड़ मां 4 ॾींहं अॻु स्कूल वेंदे मुबैना तौरु अॻवा थियल 3 शागिर्दियाणियुनि खे अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणी रोशनी, फातिमा ऐं तंज़ीला खे पुलिस अदालत में पेश कयो। पुलिस पारां गिरफ़्तार मुख्य जवाबदार ज़ैन ॿार खे बि अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणियुनि अदालत में बयानु ॾींदे चयो त कंहिं बि अॻवा नाहे कयो, मर्ज़ीअ सां हैदराबाद वियूं हुयूंसीं। हैदराबाद मां असां मीरपुर ख़ासि वियूंसीं, जितां पुलिस हथु कयो, कंहिं बि अॻवा नाहे कयो।
1: छोड़े आपणे हथनि लाइ
0: ककड़ वेझो थरड़ी जादू शहीद पुलिस मुबैना तौर 300 रुपया रिश्वत न ॾियण ते गुल बबुर वासी पीरसन पोरेत खे गॾा गाॾे सां ॿधी छॾियो। पुलिस पोरेत खे काठ सां भरियल गॾा गाॾे सां हथ पेर ॿधी थाणे अंदरि विहारे छॾियो। पोरेत जे गॾा गाॾे सां ॿधल हुअण वारी वीडियो वायरल। पोरेत बबुर चयो आहे त मिसकिन आहियां, काठियूं करे घर जो गुज़र सफ़र कंदो आहियां। पुलिस जे वॾे मुंशी सरवर कंबराणी ऐं आशिक बबुर रिश्वत न ॾियण ते तशदुद करे गाॾे सां ॿधो। कुंडरी में जमायत इस्लामी जी महांगाई ख़िलाफ़ रैली, कारकुननि पारां महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो त हुकूमत ग़रीबनि मथां रोज़ानी पेट्रोल बम किराए रही आहे। ग़रीबनि वटि हाणे खाधो खाइण जेतिरी बि सघ न आहे रही, महांगाईअ ते ज़ाब्तो आंदो वञे। ऐं कंबर में खानवा भरिसां ज़रई ज़मीन जी मालिकियत आहे। मुगेरी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो गोलियूं लॻण सबबि पुलिस अहलकार अलाह वरायो। मुगेरी ज़ख़्मी लाड़काणो इस्पताल मुंतकिल।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

छम किताब लेके निकले हम। अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: यार ही गोडन जो सूर ए चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छरी आहे हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो
3: त पोइचा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थई
2: न यार छा वाकई फायदो करे थी
3: बिल्कुल अदा कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर हंदते जल्दी जजब थी सूर सोडियम जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मा आराम पहुंचाण में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोडन जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल किए कजे
3: रुगो मुतासिर हंदते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध जेकरे उमरे या हजते उनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा
2: वाह पोए अजी वठींदस
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांच वेजी मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ्फुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंडी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ऐं टेंडो मोहम्मद ख़ान मां म्यूनिसिपल कमेटी जे मुलाज़मनि जूं पघारनि में कटौती ख़िलाफ़ एहतजाज। म्यूनिसिपल मुलाज़मनि पारां पघारनि में कटौती ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। मुलाज़मनि चयो आहे त 2 सालनि खां मुसलसल वधीक पघार न ॾिनी वई आहे, वरी मथां पघारनि में कटौती कई वई आहे। मुकमिल पघारूं न ॾिनियूं वयूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
4: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
3: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट, ऐं सकरंट जो आवाज़
6: GFM 90.8।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सुबह

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें। सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan. हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

कुछ भी नहीं हुसैन की निस्बत को छोड़ कर, कुछ भी

0: गालियूं थींदियूं आहिनि।
1: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़, अञा साबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
2: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
1: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर
2: दा आसाबनि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सगण, पुराणनि ज़ख्म जे सूर, जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
0: GFM 88 नेटवर्क।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

مجھے اکبر پہ سر عطا کر. میری بہن کی حسرت ہے

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु ई वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सिंध के माथे का झूमर,
2: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: ये सोचता हूं के

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की।

पीपल्स पार्टी खटण ते खुशी मल्हाईंदी आहे ऐं हरण ते धांधली जो घोड़ कंदी आहे। फिलहाल भुट्टो ॿुधाए त कंहिंजा ॾींहं गणजण शुरू थिया आहिनि, छा ऐवाने सदर जा ॾींहं गणजण शुरू थी रहिया आहिनि? नवां सूबा ठहिणु ख़राब ॻाल्हि नाहे, पर छा मुल्क हिन जी सट सही सघे थो? नवां सूबा ठहिणु एतिरो आसान कमु नाहे, मुल्की हालतुनि तां ध्यानु हटाइण लाइ नवां शोशा छॾिया पिया वञनि। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म जे मशवरे खां सवाइ अहिड़ी ॻाल्हि नथो करे सघे। मुल्क खे आइन मौजिब हलाइण जी ज़रूरत आहे। जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जी क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फज़लुर रहमान चयो त बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जे बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर बणजण बाबति ॼाण न आहे। मुल्क में मर्ज़ीअ जूं हुकूमतूं ठाहिण सां जमहूरियत अॻिते न वधंदी, मुल्क में क़ौमी ऐं इंसाफ़ ते ॿधल पॉलिसी जी ज़रूरत आहे। नवां सूबा एजेंडा ते नाहिनि, नई आइन में का खोट आहे। खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो ऐं नए निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनौला चयो आहे त असां आइन जी भजकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त हीउ कमु कीअं कंदो। हीउ सिस्टम अधु सदी कामयाबु रहियो आहे, अॻिते बि कामयाबु रहंदो।

आस पास के वालदेन के लिए खुशखबरी पारस अनमोल पब्लिक स्कूल दर्स मोरो में नर्सरी का अठे क्लास तई मुफ्त दाखिला जारी है। इतने तवाजे बारन के तजुर्बेकार उस्ताद के निगरानी में दीनी ए जदीद तालीम साफ सुथरो महफूज माहौल कुशादा क्लासरूम बिजली से गड सोलर सिस्टम ए थदो पीण जो साफ पानी फराहम किया वे तो रोजानो शाम जो नर्सरी का अठे क्लास तई ट्यूशन क्लासेस पिण मौजूद हैं। देर न करो अजे पांजे बार

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामिन तमाम दो प्यार जीए मोहब्बत 88 आई जीए सेकंड 90.8 प्रोग्राम से जी गाल डॉक्टर फराज कामरान सागर साण करे मा तवा जो पांजो मेजबान गुलाब खान बेण अदसु कढाल नवा जा ठीक है ते बे सही है आवां जी उम्मीद तरफ करे तवा सबदी मुजन भाईरन आई भेनो ना बिल्कुल खैर खैरत के अस तवा सा हर वक्त हर हंद हमेशा गरगर हुंदी है ने हमेशा वा दुआ या हुंदी है तला तला सते तवा के खुश है आबाद रखे कदे भी दुखियो दी सो सदाई खिलंदा आई मुस्कुराईंदा रहो ते प्रोग्राम सेहत जी गाल डॉक्टर फराज कामरान सागर में आज न सिर्फ असा मोरो जी मोरो FM 88 जा जेके समूरा लिसनर्स आहिनि उहे गॾु आहिनि पर अॼु असां सकरंड 90.8 जा जेके लिसनर्स आहिनि उहे बि अॼु असां सां गॾु आहिनि त हीउ जेको प्रोग्राम आहे हीउ प्रोग्राम सिहत जे मुतालिक प्रोग्राम आहे हिन प्रोग्राम में असां सां गॾु हूंदा आहिनि इस्लामाबाद जा मशहूरु व मारूफ़ होम्योपैथिक जा 26 सालनि खां वधीक तजुर्बो रखंदड़ डॉक्टर

0: काली है, उन सब का जो ओरिजिन है, जो मंबा है, जो इसकी जो मेन वजह है, जो मेन काज है, वो बेसिकली इनके दिमाग की
1: डिप्रेशन वाला,
0: हाँ डिप्रेशन वाला जो मामला है, जो परेशानी है वो है। देखिए आजकल परेशान हर इंसान है, लेकिन जो इंसान दिमागी तौर पर या आसाबी तौर पर कमज़ोर होता है या जिसका इम्यून पावर कमज़ोर होती है, तो उसी इंसान को परेशानी या डिप्रेशन या एंजाइटी या जो मुश्किलात हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है।

0: मेडिकल सेंटर ते जिते डॉक्टर साहब सुबुह जो नाए खां वठी शाम जो पंजे वगे ताईं वेहंदा आहिनि ऐं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। अचण खां पहिरियां जंहिं नंबर ते तव्हां कॉल कई हुई इन साॻे नंबर ते कॉल करे डॉक्टर साहब खां पुछी करे हलिया अचो, इनशा ताला तव्हांजी इहा तकलीफ़ मुकमल तौर ते ख़तमु थी वेंदी। अस्सलाम वालेकुम। जी अदा साईं, केरु किथां खां ॻाल्हायो पिया? जी अदा नसरुल्ला कोराई, किथां ॻाल्हायो पिया था? जी अदा बीमारी वगैरह आहे छा जंहिंजे करे रत नथो ठहे? अच्छा, बीमारी टेस्टूं करायूं आहिनि, का बि कोन्हे, का खाधो पीतो सही खाईंदो भला? अच्छा, मतलब पेट में जलन थे थी, अगर चांवर वगैरह खाओ था देख जा।
1: जी साईं।
0: अच्छा ठीक आहे, डॉक्टर साहब खां पुछी था वठूं। वॾी महिरबानी भाउ तव्हांजी, तव्हां असांखे कॉल कई, पंहिंजो रेडियो सेट तव्हां ऑन करे वठिजो। डॉक्टर साहब, ये 20 साल का बच्चा है और उसका ये कहना है कि मुझे कमजोरी महसूस होती है।
2: जी,
0: इसने एक अच्छी पॉइंट बताई कि अगर मैं चावल खाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा जलन होती है।
2: जलन होती है। देखिए, चावल आजकल के जितने भी खुराक है ना, उसमें दो चीज़ें बहुत नुकसानदेह साबित हो रही हैं। उसमें एक है चावल, पहले नंबर पर है चिकन, फार्मी मुर्गी, और दूसरे नंबर पर है चावल। चावल आपने देखा होगा कि जो भी शुगर के मरीज हैं उनको तो चावल फौरन बंद करवाया जाता है। तो आप खुद सोचें कि चावल जब शुगर के मरीज को बंद करवाया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये शुगर के मर्ज को बढ़ावा देता है। तो जब आप सेहतमंद इंसान भी चावल खाएगा तो उसको भी शुगर होने के चांसेस होंगे, या शुगर जैसे अमराज में वो मुब्तला हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि चावल बजाते खुद एक बेहतरीन खुराक नहीं है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना आप चावल से दूर रहें। दूसरे नंबर पर जो चीज़ मैं बताता हूँ जिससे मैं मना करता हूँ वो है चिकन। चिकन भी जो है ना वो हमारे सेहत को बहुत बुरी तरीके से ख़राब करती है और इसके नुकसान काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, इस भाई को जो ये मसला हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके मैदे में कुछ प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर है, जिसकी वजह से जो ये खुराक खा रहा है वो खुराक इसके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह से गुजरने के बाद, एसोफेगस से गुजरने के बाद वो हमारे मैदे में पहुँचती है और मैदा उसको कुछ तेज़ाब और एंजाइम वगैरह से ऐसा करता है कि उसके तमाम जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो उसके अंदर विटामिन हैं, मिनरल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, उसको काबिल हज़म बनाता है और उसको हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर हमारा मैदा ठीक ना हो तो वो खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बनने की बजाय जिस्म से खारिज हो जाती है।
0: सही।
2: और उसके हमें वो फायदा नहीं होता जो कि हमें असल में चाहिए होता है। इस सारे सिस्टम को सही करने के लिए होम्योपैथी में मैदे से मुतालिक बहुत सारी मेडिसिन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत से प्रॉब्लम, जैसे गैस हो गई, गैस उस वक्त बनती है जब हमारा मैदा खाने को हजम नहीं कर पाता,
0: तो
2: वहाँ पर गलना सड़ना शुरू होती है और वो जो है ना गैसेस पैदा करती है। तो उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। इसके अलावा जो अगर आपका खाना मैदे में जाने के बाद बोझ बन जाता है,
0: जिसे
2: भर्ती कहते हैं, तो वो भी होम्योपैथी मेडिसिन के जरिए बआसानी ठीक किया जा सकता है। अगर खाना खाने के बाद जलन होती है और खट्टी डकारें आती हैं, उग्राइयाँ, तो ये भी जो है ना होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए बआसानी ठीक की जा सकती है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि आप क्लिनिक पे तशरीफ लाएं ताकि आपकी ये प्रॉब्लम जो है इसको दुरुस्त किया जा सके। थोड़े से इलाज से आपका ये मैदे का मसला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह। कॉलर तरफ अंदाजी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर,
0: मोरे खान। जी अदा मीर नवाज, छा था पूछना चाहिए डॉक्टर साहब का?
1: साईं असांजे कज़न आहे, हुनजे डिलीवरी भेरे ऑपरेशन थियो सीज़र,
2: कितना अर्सा पहले
1: ब्लड चढ़ियोसि,
0: ठीकु आहे,
1: तकरीबन माना टे चार साल थी विया,
0: ठीकु आहे, चार साल अॻु,
1: हा हाणे हुन सां इहो मसलो आहे जो माना माहवार अचनि था न,
0: अच्छा हाणे इन्हीअ आहे तव्हां इहो डॉक्टर साहिब खां पोइ बाद में कॉल करे जेको आहे न पुछी वठिजो, ठीकु आहे, लाइव कॉल ते असां तव्हांखे हिन जे मुतालिक नथा ॻाल्हि ॿोल करे सघूं, अहिड़े क़िस्म जी अगरि कंहिंसां बि को इशू आहे त उहो डॉक्टर साहिब खां इन ई साॻे नंबर ते प्रोग्राम खां बाद में कॉन्टेक्ट करे सघे थो, ऐं उन जे लाइ तव्हां सुबुह जो जेको टाइमिंग उन जी अथव उहा सुबुह जो 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं आहे, उन दौरान तव्हां डॉक्टर साहिब खां अहिड़े क़िस्म जा जेके पोशीदा मर्ज़ आहिनि उन जे मुतालिक जेकर को ॻाल्हि ॿोल करणु चाहे थो, को मरीज़ डॉक्टर साहिब खां मशवरो करणु चाहे थो, त उन जो बि टाइम सुबुह जो 9 वॻे खां वठी शाम जो 5 वॻे ताईं आहे। त प्रोग्राम से जी ॻाल्हि डॉक्टर फराज कामरान सां गॾु जी एमओरो एफएम ईटी जे लाइव स्टूडियो मां ऑन एयर कयो पियो वञे, जंहिंमें असां सां गॾु सकरंड जा जेके असांजा लिसनर्स आहिनि, सकरंड नवाब शाह खां जेके असांखे ॿुधी रहिया आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि, ऐं उन्हनि खे मां ॿुधाईंदो हलां त असांजे स्टूडियो में हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि इस्लामाबाद जा मशहूर मारूफ़ होम्योपैथिक जा 26 सालनि खां वधीक तजुर्बो रखंदड़ डॉक्टर फराज कामरान, जंहिंजी क्लीनिक मोरो शहर में आहे, जेका आहे आलमाणी मेडिकल सेंटर साम्हूं बाईपास टाउन। अच्छा, इहो बाईपास टाउन जेको आहे इहो टाउन आहे हिकिड़ो ठहियल, ऐं उनजे बिल्कुलु आम्हूं साम्हूं रोड जे ॿिए तरफ़ डॉक्टर फराज़ कामरान जंहिंजी क्लीनिक आहे, जेका आलमाणी मेडिकल सेंटर आहे हिकिड़ो ठहियल, कंहिंखां बि जेको अगरि सकरण जेको माण्हू इलाज जे लाइ मोरो अचे थो त कंहिंखां बि पुछंदा आलमाणी मेडिकल सेंटर जे बारे में त हुनखे आसानी सां उनजो ॾस मिली वेंदो। अञा बि उनखां वधीक आसान तरीक़ो इहो आहे त जेको नंबर मां तव्हांखे हिन वक़्तु ॿुधायां थो 0-3-18-40-40-217, इन नंबर ते तव्हां कॉल करे डॉक्टर साहिब खां पुछी करे तव्हां अची सघो था त डॉक्टर साहिब क्लीनिक ते मौजूदु आहिनि या डॉक्टर साहिब क्लीनिक ते मौजूदु न आहिनि। त उन जे लाइ हिकु दफ़ो ॿीहर नंबर नोट कंदा 0-3-18-40-20-17 नंबर ते कॉल करे तव्हां डॉक्टर साहिब खां बीमारियुनि जे मुतालिक़ बि मालूमात वठी सघो था। पर जेके परे खां दोस्त अचनि था उन्हनि खे असां चवंदासीं त तव्हां अचण खां पहिरियां डॉक्टर साहिब खां टाइम ज़रूरु वठो ऐं डॉक्टर साहिब खां पुछा ज़रूरु कजो त साईं तव्हां पंहिंजे क्लीनिक ते मौजूदु आहियो या न आहियो। अच्छा डॉक्टर साहिब, इहे बदहज़मी गैस बि जो है न अभी हमारा बड़ा इशू ये चल रहा है ना
2: जी, हाँ।
0: तो इसके लिए एक तो वजूहात जैसे आपने बताया कि भाई
2: जो होटल का खाना, फूड है और होटल का खाना जो है ना
0: ये है, मगर इस बीमारी से अपने आप को बचाया कैसे जा सकता है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने खुराक को ना सादा रखना चाहिए ना, अगर आप घर का खाना खाते हैं तो घर में जो खाना बनता है एक तो वो साफ सुथरा होता है और दूसरा ये अपने सामने जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसका आपको अच्छी तरह मालूम होता है कि घी कौन सा इस्तेमाल हुआ है, कौन सा बर्तन इस्तेमाल हुआ है, उसमें कोई चीज खराब तो नहीं आई है। जब आप अपने खाने को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बनाएंगे तो वो आपको हमेशा फायदा ही देगा, उसके नुकसान कम से कम होंगे। देखिए, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आना होती है, वो बिल्कुल ठीक ठाक इंसान को भी बीमारी टच करती ही करती है। आप कुछ भी कर लो, आपके नसीब में जो बीमारी होगी उससे आप बचाव नहीं कर सकते,
0: ठीक है।
2: लेकिन फिर भी अगर हमें एक चीज़ का पता है कि भाई ये चीज़ नुकसानदेह है, गलत है, तो उससे बचना चाहिए। होटल का खाना, गैर ज़रूरी खुराक जो है और बाजारी खाने, ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे इस मैदे की बीमारी का असबाब है। दूसरी बात क्या है, ये जो गैर ज़रूरी नींद है, हमारे नींद का जो टाइम है ना, नींद ना, ये

0: और बोन मैरो से रेड सेल्स बनाने के लिए जो हार्मोन हमारे जिस्म में ज़रूरत होती है, एक हार्मोन होता है जैसे एड्रेनालिन है, हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड बनाता है,
1: ठीक है।
0: ये ग्लैंड उस वक्त काम करता है जब आप खामोशी और अंधेरे में सोए होते हैं। अगर आप रोशनी में सो रहे हो या आप ऐसी जगह पर सो रहे हो जहाँ पर शोर शराबा है, जैसा कि आप दिन में सोते हो तो दिन में तो आपको बाजार की आवाज़ें और शोर शराबा और ठाठू ये सारी चीज़ें आपको आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। अगर कोई बहुत ही ढीठ इंसान है और वो फिर भी सो जाए तो भी उसको जो है ना नींद में ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा दिमाग नींद में मरा हुआ नहीं होता, वो फिर भी उसके एहसासात जो हैं वो जाग रहे होते हैं। तो आपको वो चीज़ जो है ना, वो आवाज़ें, वो शोर शराबा, वो डिस्टर्ब करेंगी, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, आपका एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो नहीं बन पाता या मिकदार में कम बनता है। और इसी हार्मोन की कमी की वजह से हमारा जिस्म जो है वो खून नहीं बना पाता। तो अगर हम अपने डेली रूटीन को मेंटेन करते हैं और बिल्कुल उसको दुरुस्त हाल में लेकर आते हैं तो हमारी सेहत ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहती है और हमारे जिस्म में नुकसानात या बीमारियां वो कम से कम होते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, सेहत तव्हां जी बिल्कुल सेहत बेहतर थी सघे थी जॾहिं असां पंहिंजी रूटीन खे बहितर कंदासीं। जेके मौजूदा दौर में घणे खां घणा मसला मैदे जा हिन वक़्तु हली रहिया आहिनि, हर ॿिए खां टियों माण्हू इहा दाह कंदे असांखे ॾिसण में अची रहियो आहे त मूंखे जलन थी रही आहे, बदहज़मी थी रही आहे, खटियूं ओगरायूं अचनि पियूं, मुंहिंजी मानी हज़म नथी थिए, मूंखे मतिलबु काफ़ी सारियूं जेके तकलीफ़ूं आहिनि उहे असांजी पंहिंजे एहतियात न करणु। जंहिंमें डॉक्टर साहिबु जीअं वाज़े तौर ते तव्हांखे ॿुधायो त ख़ुराक जेका घर में ठहे थी उनजो इस्तेमालु करण सां तव्हांजी जेका सिहत जे मुतलिक़ या जेके मैदे जूं तकलीफ़ूं आहिनि उहे घटि थी सघनि थियूं। उन खां अलावा टाइम सां सुम्हणु ऐं टाइम सां उथणु, इहा बि जेको आहे वॾे में वॾो सबबु बणिबो आहे तव्हांजे सिहत खे ख़राबु करण जो। ऐं उन खां अलावा ॿियूं जेके जंक फूड्स जे बारे में डॉक्टर साहिबु चवंदो आहे, जंक फूड्स असां उनखे चऊं था जेके बाज़ारि में तरियल शयूं मिलंदियूं आहिनि जेके असां खाईंदा आहियूं ऐं जंहिंजो ज़ाइको त तमामु सुठो हूंदो आहे, जेको ज़बान खे सुठो लॻंदो आहे, पर असल में उहो सिहत जे लाइ सही नाहे हूंदो, जंहिं सबबु असांजो मैदो अञा वधीक मुतासिर थींदो आहे ऐं असां वधीक बीमार थियणु लॻंदा आहियूं। त हिन सभिनी शयुनि जो जेको हल आहे उहो इहो आहे त तव्हां पंहिंजी डेली रूटीन्स खे तब्दील कयो, तव्हां पंहिंजे डेली रूटीन्स में उहे शयूं आणियो जेके कुदरती आहिनि, तव्हां पंहिंजे डेली रूटीन में उहा जेको आहे हिकमत अमली ठाहियो जेका कुदरती तव्हांजे जिस्म जी ज़रूरतुनि में शामिल आहे। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां सिहतमंद पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा। त प्रोग्राम से अची ॻाल्हि डॉक्टर फराज़ कामरान सां गॾु जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। वञण खां पहिरियां हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं स्पेशली जेके असांजा सकरनि जा दोस्त हिन वक़्तु असांखे लाइव ॿुधी रहिया आहिनि त उन्हनि खे चवंदासीं त अगरि तव्हां डॉक्टर साहिब खां इलाज जे सिलसिले में मोरो अचणु थिए थो त मां वेंदे वेंदे तव्हांखे डॉक्टर साहिब जे क्लिनिक जी एड्रेस बि ॾिसी नथो वञा। आलमाणी मेडिकल सेंटर आहे दादू रोड मोरो ते, ऐं जीअं ई सकरनि खां माण्हू अचे थो ऐं दादू बाईपास ते लहे थो या पंहिंजी गाॾी में अचे थो दादू बाईपास खां तव्हां शहर ॾे टर्न कंदा त अधु फरलांग जे फ़ासिले ते डॉक्टर फराज़ कामरान जी क्लिनिक आहे। त प्रोग्राम जो वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। वञण खां पहिरियां तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो ख़्यालु पंहिंजे दोस्तनि जो, पंहिंजे मिटनि माइटनि जो, पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखो, पंहिंजी नियाणियुनि खे तालीम ज़रूरु ॾियो, दीनी दुनियावी तालीम ज़रूरु ॾियो, पंहिंजे पुटनि खे बि तालीम ॾियो, नमाज़ जी पाबंदी कयो, नबी करीम सलाहु आल वसलम जे मथां दुरूद कसरत सां पढ़जो। त ॿिए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान वेहण खे ॾींदा इजाज़त। अलह वाही अलह निगहबान।
2: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

0: えて
1: ईरान वटो सही न कई तो तबाह थी वो अमरीका डोनाल्ड ट्रंप है ईरान से गालियन के पे मरहल में अबदार मुस्के खोलो वो बो मरहलो ईरान के एटमी हथियार बाबत होंद तेहरान के कदें भी एटमी हथियार हासिल कर न डा वा ईरान से गड सऊदी अरब यूएई कतर भी गालियन की दरख्वास्त कई हुई गाल

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।